0: ആകാശവാണി തൃശൂർ. സമയം 7 മണി കഴിഞ്ഞ് 59 മിനിറ്റ് 53 സെക്കൻഡ്. ഇനി 8 മണിക്ക് ഹിന്ദിയിലും 8:15 ഇംഗ്ലീഷിലും വാർത്തകൾ ഡൽഹിയിലെ.
1: और कपड़े सूखते थे वहाँ पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं. गांव गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं. आप भी लगवा लीजिए. 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार. 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर.
2: हर घर सूर्य घर.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया. कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते. भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए. एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की. और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से. और अब समाचार विस्तार से. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी. गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति 1 वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है.
4: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है. और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है. ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसांख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी. और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी.
3: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है. उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई.
4: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए. अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी.
3: गृह मंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे. ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है. इस दौरान गृह मंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे.

0: शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और BSF के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
1: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
0: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भोपाल में एक्ट्रेस त्विशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्विशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में त्विशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को

0: पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावटगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। ये हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटंस पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे newsonair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने सीबीएसई प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है, समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धरमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिवकुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के

0: बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारण और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिन में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई। श्री शाह गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों के मंत्रियों ने आर्थिक विकास और व्यवसायों के लिए व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि करने पर द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश संबंधों की पुष्टि की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला किया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास और किसान समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति चौधरी चरण सिंह की अटूट प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखा जाएगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मिला जुला असर देखा गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 36 अंक बढ़कर 75,904 पर था। निफ्टी 25 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर कारोबार कर रहा था। IPL क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. National Security Advisor Ajit Doval called for decisive action against terrorism and has said there cannot be double standards in the fight against it. Addressing an international security forum in Russia, Mr. Doval said, Responsible nations have to evaluate their choices and decide whether they support sponsors of terrorism or counter them with decisive action.
3: Terrorism constitutes as one of the most serious threats to international security. And he felt that this is something for which all

0: ആകാശവാണി സമയം 5 മണി. നമസ്കാരം പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ, ഇപ്പോൾ കേൾക്കാം ഹിന്ദി പാഠം. പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഹിന്ദി അധ്യാപിക അനുപം രശ്മി, പഠിക്കുന്നത് ഇഷ എസ് നായർ, അഖിലേഷ് എന്നിവർ.
1: നമസ്തേ ബച്ചോ, കേസേ ഹേ ആപ് ലോഗ്? ആശാ കർത്തി ഹൂ ആപ് ദോനോ അച്ഛേ ഹോംഗേ. തോ ചലിയേ കക്ഷാ ശുരു കർനേ സേ പെഹലേ അപ്നാ പരിചയ തോ ദീജിയേ സരാ.
2: നമസ്കാര, മേരാ നാം ഇഷ എസ് നായർ.
3: നമസ്തേ, മേ അഖിലേഷ്.
1: ബഹുത് അച്ഛേ ബച്ചോ, തോ ആജ് കാ ഹമാരാ പാഠ ഹേ ബച്ചോ, സ്വാമി ആനന്ദ് ജീ കേ ദ്വാരാ ലിഖാ ഗയാ ശുക്ര താരേ കേ സമാൻ. ഠീക് ഹേ, തോ ശുക്ര താരേ കേ സമാൻ യേ പാഠ ശുരു കർനേ സേ പെഹലേ മേ ആപ്കോ ലേഖക് കേ ബാരേ മേ ബതാഉംഗി, തോ ധ്യാൻ സേ സുനിയേഗാ. ഠീക് ഹേ, സന്യാസി സ്വാമി ആനന്ദ് കാ ജന്മ ഗുജറാത്ത് കേ കാഠിയാവാഡ് ജില്ലേ കേ കിമ്ഡി ഗാവ് മേ സൻ 1887 മേ ഹുവാ. ഇൻകാ മൂൽ നാം ഹിമ്മത് ലാൽ താ. ठीक है, तो लेखक का क्या नाम था बच्चों? लेखक का नाम स्वामी आनंद नहीं था, उनका नाम था
3: हिम्मतलाल.
1: बहुत अच्छे. जब ये 10 साल के थे तभी कुछ साधु इन्हें अपने साथ हिमालय की ओर ले गए और इनका नामकरण किया स्वामी आनंद. जब वे केवल 10 साल के थे तभी कुछ साधुओं ने क्या किया, इनको लेकर हिमालय में चले गए और इनका नामकरण फिर से किया गया और इनका नाम रखा गया स्वामी आनंद. ठीक है,
2: ठीक है.
1: 1907 में स्वामी आनंद स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए. സ്വതന്ത്രതാ ആന്ദോളൻ കാ മത്ലബ് ഹമാരാ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റിംഗ്, അപ്നി ആസാദി കേ ലിയെ ജോ ഹംനേ ജംഗ് ലഡി, ആസാദി കേ ലിയെ ജോ ഹംനേ യുദ്ധ കിയാ, ഉസേ കഹതേ ഹൈ സ്വതന്ത്രതാ ആന്ദോളൻ. ക്യാ കഹതേ ഹൈ?
3: സ്വതന്ത്രതാ ആന്ദോളൻ.
1: മഹാരാഷ്ട്ര സേ കുഛ് സമയ തക് തരുൺ ഹിന്ദ് അഖബാർ നികാലാ, ഫിർ ബാൽ ഗംഗാധർ തിലക് കേ കേസരി അഖബാർ സേ ജുഡ് ഗയേ. तब ये स्वामी आनंद जी के बारे में बता रहे हैं. ठीक, महाराष्ट्र में इन्होंने तरुण आनंद नाम का एक समाचार पत्र निकाला. यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अखबार लिखा हुआ है ना, तो अखबार का मतलब होता है बच्चों समाचार पत्र, जिसको अंग्रेजी में आप क्या बोलते हो,
2: न्यूज़पेपर.
1: हाँ, बहुत अच्छे. ठीक है, तो इनके समाचार पत्र का नाम था तरुण हिंद. फिर बाल गंगाधर तिलक केसरी अखबार से जुड़ गए. उसके बाद फिर उन्होंने केसरी अखबार में भी काम किया. पहले तरुण अखबार में काम किया, फिर केसरी अखबार में काम किया. 1917 में गांधी जी के संसर्ग में आने के बाद उन्हीं के निर्देशन में नवजीवन और यंग इंडिया की प्रसार व्यवस्था संभाल ली. और उसके बाद 1917 में वो गांधी जी के कांटेक्ट में आए. संसर्ग, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, संसर्ग मतलब उनके संपर्क में आए, उनके कांटेक्ट में आए. किसके कांटेक्ट में आए स्वामी आनंद जी?
2: गांधी जी के.
1: इसी बहाने इन्हें गांधी जी और उनके निजी सहयोगी महादेव भाई देसाई और बाद में प्यारे लाल जी को निकट से जानने का अवसर मिला. क्योंकि अब वो यंग इंडिया और नवजीवन में काम करने लगे, इसलिए अब उन्हें महात्मा गांधी जी के जो निजी सचिव थे, निजी सचिव जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं पर्सनल सेक्रेटरी, उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं मंगलेश? निजी सचिव. बोलो
3: निजी सचिव.
1: ईशा आप बोलो
2: निजी सचिव.
1: हाँ, तो महादेव भाई देसाई और प्यारे लाल जी ये दोनों किसके पर्सनल सेक्रेटरी थे? महात्मा गांधी जी के. इसलिए स्वामी आनंद इन दोनों के कांटेक्ट में आए और इन्होंने, स्वामी आनंद जी ने इन दोनों से बहुत कुछ सीखा और उन्होंने जो कुछ सीखा वही इस पाठ में हम आगे पढ़ेंगे. मूलतः गुजराती भाषा में लिखे गए प्रस्तुत पाठ शुक्र तारे के समान में लेखक ने गांधी जी के निजी

0: सचिव महादेव भाई देसाई की बेजोड़ प्रतिभा और व्यस्ततम दिनचर्या को उकेरा है, जो प्रस्तुत पाठ में आपको पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है शुक्र तारे के समान। इस पाठ में लेखक मतलब स्वामी आनंद जी ने महादेव देसाई जी के व्यक्तित्व को, व्यक्तित्व का मतलब क्या, जिसको आप अंग्रेजी में पर्सनैलिटी बोलते हो, उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, व्यक्तित्व बोलते हो। उनके व्यक्तित्व को बहुत ही अच्छे से लिखा है उन्होंने कि महादेव देसाई जी इतने अच्छे व्यक्तित्व के मालिक थे, उनकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी थी और इतना अच्छा काम करते थे कि कोई भी उनको देखकर कुछ भी सीख सकता है। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोग को, आगे चलें।
1: हाँ,
0: लेखक अपने इस रेखा चित्र के नायक के व्यक्तित्व और उसकी ऊर्जा, उनकी लगन और प्रतिभा से अभिभूत है। लेखक जो है स्वामी आनंद जी जो है, जो महादेव देसाई जी के अंदर जो ऊर्जा है, काम करने की जो शक्ति है, उसको देखकर वो प्रेरित है और वो महादेव देसाई जी के समान बनना चाहते हैं। ठीक है, महादेव भाई की सरलता, सज्जनता, निष्ठा, समर्पण, लगन और निरभिमान को लेखक ने पूरी ईमानदारी से शब्दों में पिरोया है। तो महादेव भाई जी कितने काइंड थे, कितने कंपैशनेट थे, वो कितने सज्जन थे, कितने अच्छे से सबसे बात करते थे, काम के प्रति उनकी इतनी लगन थी, उनके काम के प्रति उनकी इतनी निष्ठा थी, सबके बारे में स्वामी आनंद जी ने प्रस्तुत पाठ में जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसमें उन्होंने इसके बारे में बताया है। ठीक है, तो मैं आपको किसके बारे में बता रही हूँ मंगलेश?
1: स्वामी आनंद।
0: मैं आपको किसके बारे में बता रही हूँ ईशा?
1: स्वामी आनंद।
0: हाँ, ये स्वामी आनंद जी कौन है मंगलेश?
1: हिम्मतलाल।
0: हाँ, इनका नाम हिम्मतलाल है ना। ओके, और इस पाठ के क्या है?
1: लेखक है।
0: हाँ, लेखक है। आगे चलते हैं। इनकी लेखनी महादेव के व्यक्तित्व का ऐसा चित्र खींचने में सफल रही है कि पाठक को महादेव भाई पर अभिमान हो जाता है। स्वामी आनंद जी ने महादेव भाई के ऊपर इतने अच्छे से लिखा है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, पढ़ने वाले सोचते हैं कि हे भगवान, हमें भी महादेव देसाई जी के जैसा ही बनना है। इनकी जो लेखनी है वो इतनी अच्छी है, उन्होंने इतने अच्छे से लिखा है कि हमको ऐसा लगता है हमें भी महादेव देसाई के जैसे अपने जीवन में बनना चाहिए। लेखक के अनुसार कोई भी महान व्यक्ति महानतम कार्य तभी कर पाता है जब उसके साथ ऐसे सहयोगी हो जो उसकी तमाम इतर चिंताओं और उलझनों को अपने सिर पर ले ले। स्वामी आनंद जी क्या बोलते हैं बच्चों? स्वामी आनंद जी बोलते हैं कि कोई भी महान व्यक्ति, ठीक है, कोई भी, वो तभी इतना अच्छा काम कर सकता है जब उसके साथ वाले जो लोग हैं, उनके जो सहयोगी है, उनकी जो मदद कर रहे हैं, वो उनको सारी उलझनों से दूर रखे, है ना। आप लोग विद्यार्थी हो, है ना, आप सिर्फ पढ़ाई करते हो, राइट? आप और भी कुछ काम करते हो? नहीं, है ना, आप सिर्फ पढ़ाई करते हो। क्यों? तो इसका क्रेडिट किसको जाता है? इसका क्रेडिट आपके माता पिता को जाता है, राइट?
1: हाँ।
0: क्योंकि माता पिता ने आपको क्या बोला है कि आप सिर्फ पढ़ाई करो और बाकी कुछ काम मत करो। सेम इसी तरह महादेव देसाई ने भी गांधी जी को अपनी सारी चिंताओं से दूर रखा, आप अपना काम करिए, ओके, बाद में जो बाकी जो भी उलझन है आपकी, जो भी मुश्किलें, हम सब सॉल्व करें। तो स्वामी आनंद जी ने हमें इसके बारे में बताया है कि जो भी महानतम व्यक्ति है, महानतम व्यक्ति सिर्फ महान कार्य करने से ही महान नहीं बनता, उसके पीछे भी बहुत सारे उसके सहयोगी होते हैं, बहुत सारे उसके मदद करने वाले होते हैं। वो मदद करने वाले उनको सारी मुश्किलों से दूर रखते हैं, सारी डिफिकल्टी से, सारी मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं, तब जाकर वो व्यक्ति महान बनता है। तो गांधी जी के लिए महादेव भाई और भाई प्यारे लाल जी ऐसी ही शख्सियत थे। तो गांधी जी के लिए पीछे से काम करने वाले उनके दो सहयोगी थे, महादेव देसाई जी और प्यारे लाल जी। अगर ये दोनों नहीं होते तो महात्मा गांधी जी को आज हम इस भारत राष्ट्र के पिता के रूप में नहीं जान पाते। इसलिए गांधी जी ने भी इनके बारे में बहुत कुछ लिखा है। अपने निजी सचिव की हमेशा तारीफ करते थे गांधी जी कि अगर यदि मेरे सचिव नहीं होते, मेरे ये पर्सनल सेक्रेटरी नहीं होते, तो शायद मैं भारत के लिए इतना सारा काम नहीं कर पाता। ठीक है, स्वामी आनंद जी के बारे में आपको पता चला?
1: हाँ, पता,
2: हाँ,
1: चला।
2: पता चला।
0: मंगलेश पढ़ी।
1: स्वामी आनंद का जन्म गुजरात के कड़नियावत जिले में कमड़ी गाँव में सन 1887 में हुआ। इनका मूल नाम हिम्मतलाल था। जब ये 10 साल के थे तभी कुछ साधु इन्हें अपने साथ हिमालय की ओर ले गए और उनका नामकार किया स्वामी आनंद।
0: ओके, अब इसके आगे आप पढ़ो ईशा।
3: 1907 में आनंद स्वतंत्रता आंदोलन में जुट गए। महाराष्ट्र के कुछ समय तक तरण हिंदी अखबार निकला, फिर बाल गंगाधर तिलक के केसरी अखबार में जुट गए। 1917 में गांधी जी के संसद में अपने को
0: आने के बाद
3: उन्हीं के निर्देश में नवजीवन और यंग

0: इंडिया की
1: प्रसार
0: प्रसार
1: व्यवस्था
0: संभाली।
1: ओके, तो अब चले, अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है?
0: हाँ।
1: शुक्र तारे के समान, तो हमारे पाठ का शीर्षक है शुक्र तारे के समान। ओके मगलेश, हमारे पाठ का शीर्षक क्या है मगलेश?
2: शुक्र तारे का समान।
1: आकाश के तारों में शुक्र का कोई जोड़ नहीं। तो स्वामी आनंद जी क्या बोलते हैं, आकाश में कितने तारे हैं ना, आकाश में उन तारों में एक तारा है शुक्र तारा, जिसको आप अंग्रेजी में क्या बोलते हो, वीनस स्टार बोलते हो ना, वीनस बोलते हो ना अंग्रेजी में, उसी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, शुक्र तारा। उसका कोई जोड़ नहीं है बच्चों, उसके कॉम्पिटिशन में कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सबसे चमकीला स्टार है, वो बहुत चमकने वाला है, ठीक है? तो शुक्र तारा कैसा होता है,
2: बहुत चमककार होता है।
1: हाँ, बहुत चमकता है आकाश में, उसका चमकीलापन बहुत दूसरे तारों से ज्यादा होता है। ओके, तो ये शुक्र तारा क्या है, पूरे आकाश में इसके जैसे चमकने के लिए उस प्रतियोगिता में और कोई नहीं है, ठीक है? इतना समझ में आया?
2: समझ में आया।
1: शुक्र चंद्र का साथी माना गया है, ये जो शुक्र तारा है ये किसका साथी है, साथी मतलब दोस्त, ये किसका साथी है, चंद्र का। चंद्र मतलब चंद्रमा, चंद्रमा मतलब जिसको अंग्रेजी में मून बोलते हैं ना आप लोग, उसको हम बोलते हैं चंद्रमा। तो ये शुक्र क्या है, चंद्रमा का दोस्त है। कौन किसका दोस्त है मंगलेश?
2: शुक्र तारा।
1: हाँ, शुक्र तारा चंद्रमा का दोस्त है, ठीक है? उसकी आभा प्रभा का वर्णन करने में संसार के कवि थके नहीं। चंद्रमा के बारे में हमने कितनी कविताएं पढ़ी हैं, राइट? हमने कितने आर्टिकल्स पढ़े हैं ना, तो सब लोग चंद्रमा के बारे में लिखते हैं, सब बड़े बड़े कवि लोग, बड़े बड़े लेखक लोग चंद्रमा के बारे में लिखते लिखते थकते नहीं है वो लोग। क्यों चंद्रमा के बारे में लिखते हैं, क्योंकि वो दिखने में बहुत
2: सुंदर लगेगा।
1: हाँ, वो दिखने में बहुत सुंदर है, और उसके जो प्रकाश है उसका प्रकाश चारों तरफ फैलता है ना, चंद्रमा का प्रकाश जब चारों तरफ फैलता है उसको बोलते हैं चांदनी, हिंदी में क्या बोलते हैं,
2: चांदनी,
1: ठीक है? चंद्रमा के प्रकाश को, चंद्रमा की लाइट को, प्रकाश मतलब लाइट। ओके, इतना समझ में आया?
2: समझ में आया अध्यापक जी।
1: तो चलिए आगे चलते हैं। फिर भी नक्षत्र मंडल में कलगी रूप में इस तेजस्वी तारे को दुनिया ऐन शाम के समय बड़े सवेरे घंटे दो घंटे से अधिक नहीं देख पाती। ओके, तो ये जो नक्षत्र है बच्चों, ये जो शुक्र तारा है, तारे को हम नक्षत्र भी बोलते हैं, ठीक है?
0: हाँ।
1: तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें उलझन में मत पड़िएगा। तो इस तेजस्वी तारे को, ये जो दुनिया है, इस कलगी रूप में है, ये कलगी मतलब बहुत तेज चमकने वाला, कलगी रूप में। ओके, आपने मोर पक्षी को देखा है, मोर पक्षी के सिर के ऊपर एक छोटा सा आकार होता है ना, उसी को हम बोलते हैं कलगी।
2: कलगी,
1: हाँ, क्योंकि मोर बहुत सुंदर है ना, उसके सिर के ऊपर कलगी होती है ना, वो भी एक कलगी के समान है, आकाश में एक कलगी के समान, मतलब बहुत तेज चमकने वाले की जैसा है। आप दिन में देख सकते हो चंद्रमा को?
2: नहीं,
1: नहीं देख सकते, है ना? शाम के समय देख सकती है, और क्या है, और बड़े सवेरे अगर आपको देखना है तो सिर्फ दो घंटे से अधिक आप नहीं देख सकते, सुबह सवेरे प्रातः काल इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। ओके, और सिर्फ आप दो घंटे देख सकते हो चंद्रमा को, उसके बाद आप शाम के समय ही देख सकते हो, है ना? तो चंद्रमा को सब लोग हमेशा नहीं देख सकते। इतना समझ में आया?
2: समझ में आया।
1: चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह भाई महादेव जी आधुनिक भारत की और दुनिया को मुग्ध करके शुक्र तारे की तरह ही अचानक अस्त हो गए। चंद्रमा के समान ये कौन थे? महादेव देसाई जी। आधुनिक भारत की स्वतंत्रता के उषा काल में उनका जन्म हुआ। महादेव देसाई ये निजी सचिव है, ये पर्सनल सेक्रेटरी हैं गांधी जी के। ओके, क्योंकि ये बहुत प्रतिभावान है, इसलिए इनकी तुलना चंद्रमा के समान की गई है, कि जैसे चंद्र को हम हमेशा नहीं देख सकते, कभी कभी सुबह सवेरे दो घंटे ही देख सकते हैं, ठीक वैसे ही महादेव जी आधुनिक भारत की स्वतंत्रता के उषा काल में अपनी आभा से हमारे आकाश को जगमगा कर देश और दुनिया को मुग्ध करके शुक्र तारे की तरह अचानक अस्त हो गए। उन्होंने वो चंद्रमा के समान उदित हुए और अपनी आभा से, अपने प्रकाश से, अपनी चमक से सारी दुनिया को मुग्ध कर दिया। सभी ने उनके गुणों को देखा, कि सभी ने उनकी क्वालिटीज को देखा, सभी ने उनके काम की प्रशंसा की। मतलब आकाश मंडल की तुलना कार्य मंडल से की जा रही है। वो अपने कार्य में बहुत ही अच्छे थे, और अचानक जैसे चंद्रमा अस्त हो जाता है, ओके,
2: वैसे ही
1: छिप जाता है, वैसे ही वो भी अस्त हो गए। तो ये महादेव देसाई जी है ना, उन्होंने अपने गुणों से, अपने व्यक्तित्व से, अपने कार्य में उन्होंने बहुत प्रसिद्धि पाई, उन्होंने बहुत अच्छे से उन्होंने गांधी जी का साथ दिया, गांधी जी के हर एक कार्य में उनका सहयोग दिया, और अचानक सब काम करके वो क्या किए, उन्होंने क्या हो गया, वो चले गए, इस दुनिया को छोड़ गए। मगर आधुनिक भारत में एक व्यक्ति को कैसे काम करने, आधुनिक भारत मतलब

0: मॉडर्न इंडिया, जिसको आप अंग्रेजी में मॉडर्न इंडिया बोलते हैं. ओके, अब मॉडर्न इंडिया को हिंदी में कैसे बोलेंगे मंगलेश?
1: आधुनिक भारत.
0: कैसे बोलेंगे ईशा?
2: आधुनिक भारत.
0: हाँ, आधुनिक भारत. तो आधुनिक भारत में एक व्यक्ति को कैसे काम करना है, इस काम के प्रति पूरी निष्ठा और पूरी लगन को हमारे साथ शेयर करके, हमारे साथ साझा करके वो चले गए. ठीक है, धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है, कल फिर मिलेंगे.
1: धन्यवाद अध्यापिका जी.
3: ഹിന്ദി പാഠം പഠിപ്പിച്ചത് അധ്യാപിക അനുപം രശ്മി, പഠിച്ചത് ഇഷ എസ് നായർ, അഖിലേഷ് എന്നിവർ. ഹിന്ദി പാഠം സമാപിച്ചു.

0: मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित चार स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में। और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
2: सबने मिलकर यह तय किया है कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वो एक बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। NABL प्रमाणित लैब वहाँ उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
0: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
3: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होरमूज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमरीका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन

सीमा प्रबंधन, कार्यतंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.news

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया

0: जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुँचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
1: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
0: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट PTM के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग खई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में और IPL क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Home Minister Amit Shah announces major shift in border management leveraging technology and four-layered security involving citizens, says eradicating illegal immigration is vital to protect nation's demography. Government establishes national seed reserve of 1,74,000 quintals to ensure seed availability to farmers. Education Minister Dharmendra Pradhan assures strict action against examination mafias and protection for deserving students. Indian shuttlers Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter men's doubles semi-final of Singapore Open Badminton. Mixed doubles duo ध्रुव कपिल